0: एक मार्गदर्शक भी चल रहा है, उसी मार्ग पर एक खोजी भी चल रहा है। खोजी के लिए मार्गदर्शक की जरूरत है। खोजी चल ज्ञानी भी अज्ञानी भी जीवन में एक साथ चलते हैं, पर ज्ञानी उसी जीवन को काटते हैं मुस्कुराते, अज्ञानी रोते रोते काटता है उसी समय।
1: अनंत काल से ये जीवन मृत्यु का जो खेल चल रहा है, किसी जीव को बड़े समृद्ध घर में जन्म मिलता है और किसी जीव को ऐसा घर जिसमें भरपेट खाने को भी नसीब नहीं होता। इस विडंबना के पीछे का रहस्य क्या है? किस आधार पर किसी जीव को जन्म मिलता है?
0: पांच रहस्यों में से एक रहस्य जन्म रहस्य। भगवान ने कुदरत ने बहुत कृपा करके जन्म को रहस्य बनाए रखा, नहीं तो तुम दुखी रह जाओगे पुरानी सारी बातें याद करके। अच्छा है तुम नहीं जानते, मगर एक समय जीवन में ऐसा आएगा जब तेरी चेतना तेरा मन वर्तमान में रहने लगे, वर्तमान में पूरी तरह से टिकने लगे, तब तुम्हें स्मृति भी जागेगी, मैं कहां था, क्या था, मैं कौन था। स्मृति तुम्हें जगने लगे, किसी किसी को न भी जगे तो भी कोई हर्ज नहीं, जी पूरा मिट जाएगा किसी को, जब किसी किसी को याद आएगा फिर मिट जाएगा। सारा संसार कार्य और कारण से बना है, कॉज एंड इफेक्ट। कोई आज धनी है तो भी उसका कारण है, कोई आज गरीब है तो भी कारण है। मगर ये सब क्या हमारा पूर्व लिखित है क्या? अभी हमारी कोई आजादी नहीं है क्या? ये नहीं पूछना, जरूर आजादी है। कुछ हम लेके आए, कुछ अब यहां करते हैं, हमें कर्म स्वातंत्र।

0: एक जोशी ने कहा किसी से, अरे तेरे बेटे के हाथ से तो हजारों लोग खाएंगे। समझ गए तुम लोग? उसके पिता तो समझ बैठे, ये तो बड़ा उद्योगपति होएगा, कारखाना खोलेगा, बहुत लोगों को ये खिलाएगा, खाना खिलाएगा। मगर वो बना होटल में सर्वर। तो फिर ज्योतिषी के पास बोले कि आपने कुछ बोला, हमारा बेटा तो होटल में आपको खाना देता है, नौकरी करता है। भाई उधर क्या करता है, रोज कितने लोगों को खिलाता है तेरा, उसी के हाथ से तो बावर्ची बन गया। फिर बावर्ची बना, रोज बना रहा है वहां से डोसा, कितने लोगों को खिला रहा है। तुम्हारा तो सच ही हुआ। हर एक के जीवन में कर्म स्वातंत्र है, और पूर्वार्जित कर्म का भी असर है। गरीब भी अमीर हो सकता, अमीर भी गरीब हो सकता, ये तो संभावना है, ठीक है ना। जहां तुम पैदा हुए हो वो तो कर्म से पैदा हुए हो, मगर जहां तुम पहुंचना चाहते हो वो तो तुम्हारे ऊपर।
1: आदरणीय श्रोता, आजको लागि द आर्ट अफ लिभिङको संयोजनमा सञ्चालित यो कार्यक्रम अमृतधारा यति नै।

0: मन शांति आराधना र उपहारका लागि समेत प्रयोग गर्न सकिने कञ्चनजङ्घा अगरबत्ती नेपालको पहिलो ISO सर्टिफाइड अगरबत्ती कम्पनी।
1: कञ्चनजङ्घा अगरबत्ती पवित्र सुवास।
2: आजकल शुद्धता पाउन कति गाह्रो भइसक्यो,
3: जहाँ हेर्यो त्यहाँ मिसावट छ,
2: त्यसैले शुद्धता नै खोजौं।
4: जेजे ज्वेलर्स
5: प्रस्तुत छ जेजे ज्वेलर्स। जेजे ज्वेलर्समा छ सुन चाँदी तथा हीरा का आकर्षक डिजाइनहरुको उत्कृष्ट कलेक्शन। सुन चाँदी तथा हीरा जे किन्नुस जेजे ज्वेलर्सकै किन्नुस।
6: जेजे ज्वेलर्स बसन्तपुर न्यू रोड दमकल नजिक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक मुनि।
7: संपर्क नंबर 5320411 9802076888।
5: जेजे ज्वेलर्स शुद्धता को पहचान।
8: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनु हुने महानुभाव हरुले मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क करना सक्नु हुनेछ।

ज्ञान गीता ज्ञान संस्कृत भाषा रूपांतरण का साथ में प्रत्येक बृहस्पतिवार बिहान 8 बजे देखि 9 बजे सम्म सुन्न सक्नुहुने छ केवल FM अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz में।

बृहस्पतिबार बिहान 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुनेछ केवल एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 मेगाहर्जमा। अध्यात्म ज्योति मार्फत व्यवसाय वस्तु एवं सेवाको विज्ञापन गर्न इच्छुक महानुभाव सम्पर्क हेतु टेलिफोन नम्बर 98 41 28 98 41 28 90

0: एफएम अध्यात्म ज्योतिमा अब अगाडि कार्यक्रम मधुरम। यस कार्यक्रमका प्रायोजक
1: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नम्बर 13, न्यू रोड, काठमाडौँ। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
0: नमस्ते, स्वागत अनि अभिवादन। यो कार्यक्रम मधुरममा म सभ्यता तिवारी अब केही मधुर भजनहरूको साथ

0: FM अध्यात्म ज्योति शांति रेडियो
1: यहाँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम मधुरम। यस कार्यक्रमका प्रायोजक
2: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नम्बर 13, न्यू रोड, काठमाडौँ। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सबै।

0: मधुरम यस कार्यक्रमका प्रायोजक
1: राधा कृष्ण ज्वेलर्स विशाल बजार पसल नम्बर 13 न्यू रोड काठमाडौँ राधा कृष्ण ज्वेलर्स रोजाई मेरो सधैँभरि
0: अध्यात्म ज्योति 104.8

0: FM अध्यात्म ज्योति शांति रेडियो
1: यहाँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम मधुरम। यस कार्यक्रमका प्रायोजक
2: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नम्बर 13, न्यू रोड, काठमाडौँ। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।

0: ज्ञान
1: भगवान श्री कृष्ण अर्जुन संवाद श्रीमद् भगवद गीता गीता ज्ञान नमस्ते कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। यो कार्यक्रममा हामी श्रीमद् भगवद् गीता उल्था सहित यहाँ समक्ष प्रस्तुत गर्नेछौँ।
2: भगवद् गीता अध्याय 12। दोस्तों, मंदिर में जाकर के आप ईश्वर की उपासना कर सकते हैं, या चाहें तो अपने काम को करते हुए भी कृष्ण को मन में रख सकते हैं। दोनों तरह की भक्ति में कोई फर्क नहीं है, लेकिन कृष्ण कर्म योग को अधिक महत्व देते हैं। अगर आप अपना हर काम कृष्ण को समर्पित करते हुए करें तो काम का काम और कृष्ण का नाम भी हो जाएगा। मैं शैलेंद्र भारती भगवद गीता का 12वां अध्याय शुरू करता हूं, जिसका नाम है भक्ति योग।

इस श्लोक में अर्जुन एक ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं जिसके बारे में हम सब सोचते हैं। कुछ प्रेमी भक्त जन तो निरंतर कृष्ण के भजन और ध्यान में लगे रहकर उनकी पूजा करते हैं, लेकिन कुछ दूसरे भी भक्त होते हैं जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही भजते हैं। तो इन दोनों प्रकार के भक्तों में अति उत्तम कौन है? दोस्तों, जिस कृष्ण के रूप को हम जानते हैं वो सगुण है। एक होता है ब्रह्म, जिसका अंश हम सब में है, उस निराकार परमात्मा को निर्गुण कहते हैं। ऐसे दो अलग अलग तरीके से भजने वालों में कृष्ण को ज्यादा मान्य कौन है?

श्री भगवान बोले, जो लोग मुझ में मन को लगा के निरंतर मेरे भजन में लगे रहते हैं, ऐसे भक्तजन श्रद्धा से युक्त मेरे सगुण रूप को भजते हैं, वे मुझको उत्तम योगी मान्य हैं। बंसी बजैया, रास रचैया, ये कृष्ण का सगुण रूप है। सगुण रूप मतलब जहां पर एक आकार है, एक अस्तित्व है, एक पहचान है, जिसका कि उसके गुणों के माध्यम से आप किसी को उदाहरण दे सकते हैं। और निर्गुण रूप में कोई आकार नहीं, कोई अस्तित्व नहीं, बस एक परम तत्व होता है। कृष्ण कहते हैं कि उनके सगुण रूप को पूजने वाले योगी उन्हें बहुत पसंद हैं।

सगुण रूप को भजने वाले योगी कृष्ण को उत्तम लगते हैं, लेकिन इन श्लोक में वो उससे आगे बता रहे हैं। कृष्ण कहते हैं कि जो पुरुष अपनी इंद्रियों को भली प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे उस सर्वव्यापी नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक भाव से भजते हैं, वे योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। जो सगुण रूप में कृष्ण को भजते हैं वो कृष्ण को पसंद हैं दोस्तों, लेकिन जो निर्गुण ब्रह्म को पूजते हैं वो भी सीधे कृष्ण को ही प्राप्त होते हैं। आपको जैसा ठीक लगे आप वैसे अपने इष्ट को भज सकते हैं।

निर्गुण ब्रह्म का पूजन कोई आसान बात नहीं। कृष्ण बता रहे हैं कि उस निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों की साधना में विशेष परिश्रम होता है, क्योंकि आपको अपना देहाभिमान छोड़ना पड़ता है। जब निराकार को पूजेंगे तो स्वाभाविक है कि आप आकार में आस्था नहीं कर सकते। उसके लिए खुद की देह का, खुद के आकार का जो स्वाभिमान है, वो भी तो छोड़ना होगा। कृष्ण कहते हैं कि जब तक देह का भान है, तब तक अव्यक्त की प्राप्ति बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि निर्गुण की उपासना गलत है, बस ये कि बहुत ही दुष्कर है। इसी के बारे में कृष्ण चेतावनी दे रहे हैं।

लेकिन जो लोग कृष्ण को ही मानते हैं, अपने सारे कर्मों को कृष्ण में अर्पण कर उसके सगुण रूप की उपासना करते हैं, कृष्ण को ही परमेश्वर मान अनन्य भक्ति योग से लगातार चिंतन करते हुए भजते हैं, उनका उद्धार कृष्ण स्वयं करते हैं। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, हे अर्जुन, मुझमें चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार कर देता हूं। दोस्तों, पुस्तक से पढ़ाई आप स्वयं करके भी एग्जाम्स में पास हो सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं, लेकिन अध्यापक उस पढ़ाई को आसान कर देता है। आपके साथ वो आपका मार्गदर्शन करते हुए चलता है। प्रॉब्लम होने पर आप उस टीचर से पूछ सकते हैं। वैसा ही कृष्ण के सगुण रूप की पूजा है।

संशयः। कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं कि उसको कृष्ण में मन को लगाना चाहिए, कृष्ण में ही बुद्धि को लगाना चाहिए। दोस्तों, अपना मन और बुद्धि दोनों अगर आप कृष्ण में या अपने लक्ष्य अपने काम में लगा देंगे तो फिर वो काम कितना भी मुश्किल हो आप उसमें लगातार लगे रहेंगे, अपने लक्ष्य की ओर हमेशा बढ़ते रहेंगे। ऐसा ही कृष्ण भी कहते हैं कि उनमें मन और बुद्धि लगा के भक्त फिर उनमें ही निवास करने लगता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। जिस भी वस्तु या काम में मन और बुद्धि दोनों लग गई तो फिर आप उसी में ही तो निवास करने लगते हैं, उसी काम को जीने लगते हैं, और यही बात श्री कृष्ण सिखा रहे हैं।

ये कह तो दिया कि मन और बुद्धि को कृष्ण में यानी अपने काम में लगाना है, लेकिन क्या यह आसान है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मन कभी रुकता नहीं दोस्तों। मन का स्वभाव ही ऐसा है कि आप इसे जो करने को कहेंगे यह उसका उल्टा करने की ही कोशिश करेगा। इसको रोकना ही दुनिया का सबसे दुष्कर काम है। दुष्कर तो है, मुश्किल है, परंतु असंभव नहीं। इसी मन को साधने के लिए कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यदि तू मन को मुझमें अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। अभ्यास ही इस मन को नियंत्रण में करने का

मन को संयम में करने का तरीका कृष्ण ने बताया और वो है अभ्यास। और यदि कोई योग का लगातार अभ्यास करने में भी समर्थ नहीं तो भी उसके लिए कृष्ण रास्ता बता रहे हैं और वो रास्ता है केवल केवल और केवल कृष्ण के लिए कर्म करना। अपना हर कर्म कृष्ण को सौंप कर अगर आप अपने मन वाणी और शरीर को भी कृष्ण को ही समर्पित कर देंगे तो भी आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। दोस्तों, इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं कि आप 24 घंटे कृष्ण की पूजा पाठ में लगे रहें। इसका अर्थ है कि जो भी आप करें उसमें कृष्ण का स्मरण, उनकी बातें और उनके ज्ञान का विचार रहे।

कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, अपने सारे कर्म तुम मुझको समर्पित कर, अपना मन और शरीर मुझ में लगाने में समर्थ न हो सके तो एक और उपाय है, और वो है कर्मों के फल का त्याग। कर्म करते हुए लाभ हानि का न सोच, फायदे नुकसान की चिंता न करते हुए अगर अपनी मन और बुद्धि पर विजय पा लेता है तो इस उपाय से तो मुझे प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, सोचिए, अगर आपने अपने कर्म के लाभ और हानि के बारे में नहीं सोचा तो मन में कभी बुरे विचार आ ही नहीं सकेंगे, क्योंकि मन में गलत विचारों का आगमन ही लालच यानी कि लोभ से होता है।

कृष्ण कहते हैं कि मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, यानी कि अगर आप जानते ही नहीं कि आप अभ्यास क्यों कर रहे हैं तो उस अभ्यास का क्या फायदा, उस अभ्यास से आप क्या पाएंगे, इससे कहीं अच्छा है ज्ञान। कृष्ण कहते हैं ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है, अभ्यास से श्रेष्ठ है ज्ञान, और ज्ञान से भी बड़ा है ध्यान, यानी कि मेडिटेशन दोस्तों। और एक चीज ऐसी भी है जो ध्यान से इन सबसे बड़ी है, और वो है कर्मों के फल का त्याग। अगर आप अपने कर्मों के फल को त्याग सकते हैं तो उससे बड़ी पूजा कोई नहीं।

हर तरह के द्वेष भाव से रहित है, जो किसी से जलन नहीं रखता, जिसमें स्वार्थ नहीं, जो सबसे प्रेम करता है, जो दयालु तो है लेकिन जिसमें ममता नहीं, वो पुरुष जो अहंकार से रहित है, सुख और दुख को एक जैसा देखता है, क्षमावान है अर्थात अपराध करने वालों को भी अभय देता है, और जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है और मुझमें दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझमें अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको अति प्रिय है। कृष्ण ने उन सारे गुणों की व्याख्या कर दी है दोस्तों जो उन्हें प्रिय हैं, और स्वाभाविक है कि जो पुरुष इन गुणों को प्राप्त करने की कोशिश भी करेगा ना, तो वो भी कृष्ण को प्रिय ही होगा।

कृष्ण बता रहे हैं कि जो जीव कभी उत्तेजना में नहीं आता और जो किसी और को भी उत्तेजित नहीं करता वो योगी कृष्ण को प्रिय है। वो योगी जिसको दूसरे की उन्नति देख के जलन नहीं होती, जो सुख और दुख को एक जैसा देखता है, जो भय और उद्वेग यानी फियर एंड एक्साइटमेंट से रहित है, दोस्तों वो भक्त कृष्ण को अति प्रिय है। अगर आप देखें ये सारी अवस्थाएं एक उत्तम योगी की हैं। वो योगी जो बस अपने काम में लगा रहता है, किसी भी तरह का भाव उसे विचलित नहीं करता, कुछ भी उसे डराता नहीं, उसका ध्यान बस अपने लक्ष्य पर, अपने काम पर रहता है।

यह कृष्ण कहते हैं कि योगी को आकांक्षा से रहित होना चाहिए। दोस्तों, आकांक्षा यानी कि एम्बिशन, एम्बिशन से ही सारे बुरे भाव पैदा होते हैं। एक तरह से ये ही सारी बुराइयों की जड़ है। लेकिन आपका सवाल हो सकता है कि बिना एम्बिशन के तो आप जीवन में कहीं पहुंच ही नहीं पाएंगे। वो निर्भर करता है कि आपकी आकांक्षा आखिर है क्या। अगर आप अपने कर्म और कर्तव्य को सबसे अच्छा करना चाहते हैं और वो ही आपकी आकांक्षा है तो उसमें कुछ गलत नहीं। लेकिन अगर आपकी आकांक्षा है धन दौलत या सांसारिक भोग तो वो ठीक नहीं, और ये बात कृष्ण को प्रिय भी नहीं।

जो जरूरत से ज्यादा हर्षित नहीं होता वो कृष्ण को प्रिय है। जरूरत से ज्यादा खुशी आने वाले जरूरत से ज्यादा दुख की निशानी होती है दोस्तों। सुख दुख भी दिन रात की तरह है, एक के बिना दूसरे का होना संभव ही नहीं। इसीलिए योगी सुख और दुख दोनों को एक सा समझता है। वो योगी जो न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष कृष्ण को प्रिय है। जो शत्रु और मित्र में और मान और अपमान में एक जैसा है, तथा सर्दी गर्मी और सुख दुखादि द्वंद्वों में सम है और आसक्ति से रहित है, वही कृष्ण को प्रिय है। योगी तटस्थ होता है दोस्तों, बाकी लोगों की तरह शोक कामना उसे परेशान नहीं करती, वो बस अपने कर्म में नियत रहता है।

जब आपकी तारीफ होती है तो मन कैसे खुशी से भर जाता है, पांव जमीन पर नहीं पड़ते, और वहीं अगर हमारी निंदा हो तो कितना बुरा लगता है। पहले शर्म आती है, फिर क्रोध होता है, लेकिन जो योगी होता है वो निंदा और स्तुति को एक समान समझने वाला होता है। वो मननशील होता है, यानी कि मनन करता है, सोचता है। शरीर का निर्वाह कैसे भी हो, छप्पन भोग यानी कि फाइन डाइनिंग हो या सादा दाल भात हो, वो दोनों में संतुष्ट रहता है। दोस्तों, योगी में न ममता होती है और ना ही आसक्ति, इसीलिए वो स्थिर बुद्धि होता है और कृष्ण को प्रिय भी।

0: यहां जो पुरुष जो योगी श्रद्धा युक्त है वो कृष्ण को प्रिय है, लेकिन श्रद्धा किस में? श्रद्धा अपने कर्तव्य में, श्रद्धा अपने कर्म में, श्रद्धा कृष्ण के ज्ञान में, उसके स्वरूप में। जहां श्रद्धा होती है वहां शंका नहीं होती, क्योंकि जिस पर आप शक करते हैं उसे सम्मान के साथ स्वीकार कैसे करेंगे? जो नौकरी आपको पसंद नहीं ना दोस्तों, उसमें पूरे मन से आप कैसे काम करेंगे? जो रिश्ता आपको पसंद नहीं उसको कैसे निभाएंगे? जीवन के हर अंग में अगर श्रद्धा हो तो सारे काम अच्छे से होते हैं, जैसे कृष्ण ने बताए वैसे ही होते हैं। जो है उसको सच्चे मन से श्रद्धा के साथ स्वीकार कर उसे और अच्छा करने की कोशिश करिए, जीवन अच्छा हो जाएगा और कृष्ण को भी आप पसंद आएंगे। दोस्तों ये था 12वां अध्याय। इसमें कृष्ण ने योगी के गुण, उसके लक्षण और भक्ति करने के अलग अलग तरीकों के बारे में बताया। तरीका आप पर निर्भर करता है, कोई भी चुनिए, बस भक्ति सच्ची रखिएगा। तो आइए अध्याय 12 को यहीं विराम देता हूं और दूसरे अध्याय में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने दोस्त शैलेंद्र भारती को आज्ञा दीजिए, जय श्री कृष्ण।
1: आदरणीय श्रोता, यहाँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम श्रीमद् भागवत गीता गीता ज्ञान। अब एकैछिन समयतर्फ ध्यान दिउँ। यस बेला हाम्रो स्टुडियोको घडीमा बिहानको 8:30 भएको छ र अब एकैछिन व्यावसायिक सन्देशहरू।

0: मंगलम अब सबैको मंगलम अब घर घरमा मंगलम सबैको इच्छा पूरा गर्ने चामल मंगलम
1: जय श्री फूड्स प्रालीद्वारा उत्पादित मंगलम जीरा मसिनो चामल मंगलम सोनम चामल मंगलम सोना स्टीम चामल स्वाद र सन्तुष्टिको लागि
2: सिल्वर प्यालेस विश्वसनीय सुरक्षित र भरपर्दो स्वदेशी श्रम र सिपबाट निर्मित आकर्षक डिजाइन का मिसावट रहित चांदी का एक्सक्लूसिव गहना लगायत भाड़ाहरू विवाह लगायत अन्य अवसर का लागि चाहिने चांदी का सामानहरू को लागि सिल्वर प्यालेस न त ठगिने डर न मिसावट को चिंता हरेक सामान मा 100% शुद्धता को ग्यारेन्टी दिने एकमात्र सिल्वर प्यालेस पसल नंबर 15 विशाल बजार न्यू रोड एवं पिउखा न्यू रोड होलसेल तथा रिटेल सेवा।
3: आजकल शुद्धता पाउन कति गाह्रो भइसक्यो,
4: जहाँ हेर्यो त्यहाँ मिसावट छ,
3: त्यसैले शुद्धता नै खोजौं। जेजे ज्वेलर्स प्रस्तुत छ जेजे ज्वेलर्स। जेजे ज्वेलर्स मा छ सुन चाँदी तथा हीरा का आकर्षक डिजाइन हरुको उत्कृष्ट कलेक्शन। सुन चाँदी तथा हीरा जे किन्नुस जेजे ज्वेलर्स के किन्नुस।
2: बसंतपुर न्यू रोड दमकल नजिक स्टैंडर्ड चार्टर बैंक मुनि संपर्क नंबर 5320411 9802076888।
3: जेजे ज्वेलर्स शुद्धता को पहचान।
2: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क कर सकूने।

0: गोल्ड पैलेस, सुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू, फोन नंबर 42 43 736।
1: वेलकम टू सिस्टर टेलरिंग,
2: रेडी मेड या शूटिंग शर्टेज, मलाई ट्रैक शूट चाहिए,
3: मलाई फ्रॉक,
4: मलाई पनी सूट,
5: वो
6: अनि मलाई

0: Sabel Chuchepak.
1: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क कर सकूँ.
2: FM AJ 1.

0: गोल्ड पैलेस सुप्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क करना सक्नुहुनेछ।

0: चेयरमैन एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड यहाँ को विश्वासिलो र भरपर्दो वित्तीय सहयात्री। हाम्रा विशेषताहरू निक्षेपमा आकर्षक ब्याज दर, सरल र सहज तरिकाले कर्जा प्रवाह, देशै भरि रहेका शाखाहरूबाट निशुल्क एबीबीएस कारोबार सुविधा, सी आसबा सुविधा, कारोबारको जानकारी दिन एसएमएस अलर्ट सुविधा, निशुल्क चेकबुक तथा सम्पूर्ण रेमिटेन्स सेवा। केन्द्रीय कार्यालय श्री इन्भेस्टमेन्ट एन्ड फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड, दिल्ली बजार, गुर्जुको चौक, काठमाडौँ।
1: Together, we deliver.

0: ओल्ड पैलेस शुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: वेलकम टू श्रेष्ठ टेलरिंग
2: रेडी मेड या शूटिंग शर्टेज मलाई ट्रैक शूट चाहिए
3: मलाई फ्रॉक
4: मलाई पनी सूट
5: वो
6: अनि मलाई

0: साबेल चुच्चे पाटी
1: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनु हुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क करना सकूने।

0: गोल्ड पैलेस शुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क करना सकूने।

0: गोल्ड पैलेस सुप्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क कर सकूने।
2: आजकल शुद्धता पाउन कति गाह्रो भइसक्यो,
3: जहाँ हेर्यो त्यहाँ मिसावट छ,
2: त्यसैले शुद्धता नै खोजौं। जेजे ज्वेलर्स प्रस्तुत छ जेजे ज्वेलर्स। जेजे ज्वेलर्समा छ सुन चाँदी तथा हिराका आकर्षक डिजाइनहरूको उत्कृष्ट कलेक्सन। सुन चाँदी तथा हिरा जे किन्नुहोस् जेजे ज्वेलर्सकै किन्नुहोस्।
4: जेजे ज्वेलर्स बसन्तपुर न्यू रोड दमकल नजिक स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक मुनि। सम्पर्क नम्बर 5320411 98020 76888।
2: जे जे ज्वेलर्स शुद्धता को।

0: गोल्ड पैलेस, शुक्लपथ न्यू रोड काठमांडू, फोन नंबर 42 43 736।
1: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनु हुने महानुभाव हरुले मोबाइल नंबर 9841289820, मोबाइल नंबर 9841289820 मा संपर्क गर्न सक्नुहुनेछ।

सद्गुरु प्रवचन श्रृंखला अन्तर्गत एफएम अध्यात्म ज्योति प्रस्तुत गर्दछ द आर्ट अफ लिभिङ को संयोजनमा श्री श्री रविशंकर जी को प्रवचन माला कार्यक्रम अमृत धारा। यस कार्यक्रम का प्रायोजक श्री इन्वेस्टमेन्ट एन्ड फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड।

0: नमस्कार आदरणीय श्रोता, स्वागत छ यहाँलाई द आर्ट अफ लिभिङको संयोजनमा सञ्चालित यो कार्यक्रम अमृत धारामा। अब हामी द आर्ट अफ लिभिङका प्रणेता श्री श्री रविशंकरज्यूको प्रवचन श्रृङ्खलाको क्रममा आजको प्रवचन सुन्नेछौँ।
1: गुरुजी, देवताओं के दो से ज्यादा हाथ क्यों होते हैं, आपके क्यों नहीं?
2: संस्कृत में जब कहते चतुर्भुज, इसको जरा समझना। चतुर्म का दो अर्थ है, चार और चतुर्मणि चतुराई। बड़ा चतुर है, कहते ना किसी को कह के, ये बड़ा चतुर है, माने जो कुशल है, कुशल व्यक्ति है, वो दैवी अंश संभूत है, दैवी संपदा से भरा हुआ व्यक्ति है। तो तुम्हें यदि कोई कहे चतुर्भुज, माने तुम बड़ा चार भुज है, ऐ नहीं समझो, तुम बड़े कुशल हो। भगवान कृष्ण के चार हाथ नहीं थे, दो ही हाथ थे, मैं बोले चतुर्भुज है, माने बड़े कुशल है। योग कर्मसु कौशल, जो कर्म में कुशल व्यक्ति होता है वो उनको योग से सिद्ध हुआ है। योग माने अपने आत्मा से जुड़ जाना, अपने आप में जुड़ जाना, अपनी ही आत्मा से जुड़ जाना, उससे योग हुआ। योग से कुशलता आई, कुशलता माने चतुराई। तो चतुर्भुज माने बड़ा कुशल हाथ। और जितने भी अभी साधना किया बड़े कुशल हो गए, कैसे हर चीज को संभालना है, फिर चतुर्भुज हो गए।
1: गुरुजी, व्हेन आई डू क्रिया एंड मेडिटेशन, lots of bad thoughts come into my mind, how to overcome them?
2: समर्पण से करो। कभी पेट खराब होने पर भी, पित्त ज्यादा बढ़ जाने पर भी, या शरीर को काफी व्यायाम न होने पर भी बहुत सारे विचार आके सताते हैं तुम्हें। व्यायाम करो, योग करो, ठीक ठाक भोजन करो, और पित्त का जो वात पित्त कफ त्रिदोष समदोष हो, तब भी सब बहुत सारे विचार आना बंद हो जाएंगे।
1: गुरुजी, स्वर्ग और नरक में क्या फर्क है? बार बार अगर जन्म लेना ही है तो अच्छे कर्म क्यों करें?
2: नहीं करना बिल्कुल, बुरे कर्म करना और रोते रहना। जब जीना ही, जब हंसना भी, यदि हंसोगे या रोओगे तो भी जीते रहोगे, तो रोते रहना, परेशान रहना क्या है? जो परेशान रहता है वो भी जीता है, जो हंसता रहता है वो भी जीता है, और जिस ढंग का जीना तुम्हें चाहिए वो तुम चुन लेना, उस हिसाब से तुम काम कर लेना। हाँ, क्या ठीक है भाई? हमें सुख चाहिए, आराम चाहिए, तकलीफ नहीं चाहिए, परेशानी नहीं चाहिए, तो बुरे कर्म क्यों नहीं करें? अच्छा, यही बात तुम्हारा पड़ोसी सोचे तो तुम्हें क्या लगा? ये जरा सोच, जो बात तुम पूछ रहे हो, तुम्हारा पड़ोसी ये बात सोचे तब तुम मुसीबत में पड़ोगे।
1: Guruji, what is the significance of the turtle at the entrance of the temple, just below the bells?
2: Turtle signifies stability, stable mind, stable intellect. That is what the turtle symbolizes. If you want to go close to the divinity, first your mind should be like a turtle. Turtle draws its all its limbs and face, everything inside when it is in danger. That means similarly, when you can bring all your organs inward, then your mind becomes stable, strong like a rock. And that is essential if you want to attain divinity. If you are like yo-yo, one day up, one day down, then you can't attain divinity. Daivi sampad apnana ho तो स्थिरता चाहिए, अंतर्मुखता चाहिए। स्थिरता और अंतर्मुखता का सूतक है कछुआ। तो मंदिर के सामने कछुआ होता है, तो जब मन इस तरह से होता है तब वो अंतर्मुखी होने लगता है। मन इस तरह से मजबूत होता है, अंतर्मुखी होता है, तो वो दैवी संपद के करीब होने लगता है। दैवी शक्ति फिर वहाँ पर प्रादुर्भाव होने लगेगा। तो भगवान को पाने से पहले मन को मजबूत करना, इसको एक प्रतीक के रूप में बताया गया। वहाँ कच्छप रख दिया सामने। हमारे सब मंदिर ये सब जो है ना, ये सब प्रतीकात्मक है। इसके भीतर से कुछ संदेश मिलता है, मगर हम लोग वो कच्छप को ही रखे, उसी को वहीं पर पूजा वूजा करने लगे, उस पर हार चढ़ाने लगे, उस पर भूल हो गया। ये एक प्रतीक है। सचमुच में कच्छप आ जाए, कच्छप तो उसको तो पत्थर मार देते या पता नहीं क्या कर देते, डर के भाग जाए। कन्नड़ में एक संत ने बताया, पत्थर का नाग को पूजते हैं, सचमुच में नाग आए तो मार देते हैं। ये क्या विडंबना है। पत्थर के एक सांप को दूध से नहलाते हैं, सचमुच में सांप आए तो उसको मार के भगा देते हैं, मार देते हैं, जान से मार देते हैं। ये कैसी दुनिया है। इसी तरह से जो भगवान मनुष्य रूप में आते हैं तो उनको कुछ नहीं चढ़ाते, उनको कहते हैं आगे जाओ, और पत्थर के मूर्ति के सामने प्रसाद लग के कहते हैं भोग लगाओ भोग लगाओ। एक ऐसी विडंबना है। जो भगवान को भोग लगाना हो वो औरों को लगाओ, गरीबों को लगाओ, जो चलते फिरते जीवंत भगवान को दे दो। कहते हैं जब जंगम आते हैं, साधु संत सत्पुरुष आते हैं, उनको कहते हैं आगे जाओ, और शिवलिंग जो कुछ खाता नहीं उसके सामने खाना रख के भाई खाओ खाओ बोलते। ये कैसी विडंबना है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि कल जाओगे कोई भिखारी आ जाएगा उनको बुला के आ घर में बिठा के खाना वाना खिलाने लग जाओ। विवेक से काम करना चाहिए। वो 12वीं शताब्दी में उन्होंने ऐसा बोला था। आजकल भिखारी साधु के वेश में बहुत से ढोंगी लोग आते हैं, तो इसलिए मैं कहता हूँ तुम लोग इतने भावुक हो के ढोंगियों को घर में बुला के सब चोरी वोरी करके चला जाया होता, ये सब नहीं करना।
0: हवस् त आदरणीय श्रोता, आजको लागि द आर्ट अफ लिभिङको संयोजनमा सञ्चालित यो कार्य